0: के नाम जी बोलो
1: सतनाम सतनाम सतनाम जी बोलो
0: नित्य नित्य जपिए के नाम जी बोलो
1: नित्य नित्य